आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: जाते तो बात है।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017008546. MGM यूनिवर्सिटी, NCC, छत्रपति संभाजीनगर.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

بہاروں کا میں عاشق، میں جو چاہے یار کروں، چاہے گلوں کے

करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

इमेजिन कीजिए, आपके पास ना सोशल मीडिया है, ना फोन है, ना कोई न्यूज चैनल, लेकिन आपके दिल में एक आवाज है, अब और नहीं। ये आवाज थी पूरे हिंदुस्तान की। 9 अगस्त 1942 मुंबई का एक मैदान और हजारों लोगों की भीड़। महात्मा गांधी ने एक ऐसी कॉल दी जो ब्रिटिश एम्पायर की नींद उड़ा देने वाली थी, करो या मरो। और यहीं से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इस मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सोचिए, आज हम एक पोस्ट करते हैं, एक हैशटैग चलाते हैं और कुछ ही मिनट में दुनिया तक बात पहुंच जाती है। लेकिन 1942 में एक मैसेज को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था। फिर भी एक आवाज मुंबई से निकली और देश के कोने कोने तक पहुंच गई। स्टूडेंट्स, वर्कर, फार्मर्स, ऑर्डिनरी लोग, किसी के पास पावर नहीं थी, किसी के पास पोजीशन नहीं थी, लेकिन सबके पास एक चीज थी, आजादी की भूख। बहुतों को जेल जाना पड़ा, बहुतों ने लाठियां खाई और कई लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस आजादी से अपनी बात कर रहे हैं, उसके पीछे उन लोगों की हिम्मत है जिन्होंने अपने आज को सैक्रिफाइस करके हमारा कल बनाया। लेकिन एक सवाल है, क्या क्रांति सिर्फ 1942 में हुई थी? नहीं, क्रांति आज भी जरूरी है। जब कोई स्टूडेंट कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, जब कोई लड़की कहती है मेरे सपनों की कोई लिमिट नहीं है, जब कोई इंसान कहता है मैं करप्शन को नॉर्मल नहीं मानूंगा, जब कोई कहता है नफरत नहीं इंसानियत चाहिए, वहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। तो इस क्रांति दिन पर सिर्फ फ्रीडम फाइटर को याद नहीं करना है, खुद से एक प्रॉमिस भी करना है, जिस देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी उस देश को बेहतर बनाने में मैं भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा। क्योंकि क्रांति हमेशा तलवार से नहीं होती, कभी कभी एक सही सोच भी पूरी जनरेशन बदल देती है। मैं हूँ आरजे अदनान और MGM 90.8 FM की तरफ से अगस्त क्रांति को सलाम, उस सभी क्रांतिकारियों को सलाम। जय हिंद। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM यूनिवर्सिटी, NC, छत्रपति संभाजीनगर.

9 अगस्त भारत के इतिहास में ये तारीख बेहद खास है। इसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का शासन जारी था, देश में आजादी की मांग लगातार तेज हो रही थी। इसी बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ने की मांग की। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने देशवासियों को एक ऐतिहासिक संदेश दिया, करो या मरो। इसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 गांधी जी और उनके साथ कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन रुका नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स, वर्कर, फार्मर और आम नागरिक आंदोलन में शामिल होने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां हुई और अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। इसी वजह से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि भारत को आजादी करीब करीब 5 साल के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ दिया। और इस दिन सबसे बड़ी सीख, आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, साहस और बलिदान का परिणाम थी। इसलिए 9 अगस्त को सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेट की तरह नहीं बल्कि उन सभी लोगों को याद करने के दिन के रूप में देखिए जिन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखा था। अगस्त क्रांति दिन पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: गुड मॉर्निंग सुपर सुपर बात छत्रपति संभाजी नगर आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: एंड 90s वाले शो में ना तो आज हम 90s की बहुत ही प्यारी मेमोरीज पर ही बात करने वाले हैं। याद है आपको दिन जब किसी बड़ी फिल्म का ना तो पहला शो लगने वाला होता था, सुबह से ही ना तो सिनेमा हॉल के बाहर लाइनें लगती थी। आज तो यार हम एडवांस में बुकिंग करते हैं, बुक माई शो पर जाकर अपने मनचाही सीट बुक करते हैं, लेकिन 90s के वक्त में ऐसा कुछ नहीं होता था जनाब। सुबह से ही सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइनें लगी होती थी और हाथ में 10 रुपए का टिकट और दिल में एक्साइटमेंट, या फिर 20 या 30 रुपए का टिकट होता था। देखो इतने वो टिकट होते थे और आज तो 200 300 500 की टिकट है और वो एक्साइटमेंट अलग ही होती थी यार 90s के दौर में, क्योंकि एक मन में ख्याल आता था कि यार हीरो की एंट्री कैसे होगी, विलन की धुलाई कैसे करेगा, और अगर शाहरुख सलमान अक्षय अमिताभ बच्चन इनकी फिल्में हो तो भाई ताबड़तोब कमाई तो हो ही जाती थी थिएटर वालों की। उस वक्त ना तो मूवी देखना नहीं था, ये एक इवेंट होता था, दोस्त परिवार पूरा मोहल्ला मिलकर प्लान बनाते थे और अंदर जाते ही वो सीट पकड़ने की दौड़, बालकनी वाली सीट मिले तो यार लग्जरी बन जाए। आज OTT है, मोबाइल है, हर चीज घर पर अवेलेबल है, लेकिन उस भीड़ का शोर, सीटी बजाना, तालियां, वो एनर्जी आज नहीं मिलती यार घर पर बैठकर। तो चलिए फिर 90s की इस एनर्जी को याद करते हैं और अगला गाना डेडिकेट करते हैं उन्हीं सीट पे लड़ने झगड़ने वाली मस्ती के नाम जो कि हम 90s के वक्त में करते थे। सो तब के लिए आप एंजॉय कीजिए गाने वाला सुपर हिट गाना और भी बहुत सारी बातें होगी 90s की, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: क्या करें।
1: The 90s वाला शो में आज हम बात करें 90s के फर्स्ट डे फर्स्ट शो और मूवी की एक्साइटमेंट के बारे में। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
2: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
3: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: 90s की एक फैक्ट याद है आपको, उस दौर में ना तो स्पॉइलर नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। अगर किसी ने ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया और लौट कर आता है तो हम उसे पूछते थे कि यार फिल्म कैसी थी, वो इतना ही कहता था भाई एकदम मस्त थी, तू भी देख ले। हाँ, उस वक्त ना व्हाट्सएप स्टोरी होती थी, ना स्टेटस, ना इंस्टा, ना रिव्यू का कुछ बॉम्ब होता था। आज तो यार फिल्म देखने से ज्यादा इंसानों को पड़ी होती कि यार वो पहले सबसे पहले इंस्टा पर जाके स्टोरी लगाए कि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है, और हर कोई अपने अपने ओपिनियन देता था। उस वक्त एक्साइटमेंट होती थी वो थी बस स्टोरी की, खुद को थिएटर में लेकर जाना, वो स्टोरी फील करना, डिस्कवर करना, और स्क्रीन पर जब हीरो और हीरोइन गाना गाते थे तो यार पूरा थिएटर गुनगुनाता था, और जब विलन पीटता था तो जोर जोर से सीटियां और तालियां तो गिरती ही थी। आज हम सोशल मीडिया पर रिव्यू पढ़कर ना तो डिसाइड करते कि यार ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखो यार, रिव्यू पढ़कर फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए डिसाइड करना थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने अलग ओपिनियन होते हैं। आज के वक्त में की बात कर रहा हूँ, 90s में ऐसा नहीं था, बस हीरो का नाम दिखा, कौन सा हीरो है, और फिल्म का पोस्टर, बस इसी पर डिसाइड होता था फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि ना का ऑप्शन था ही नहीं। और बिलो मी वही मजा था यार असली, क्योंकि यार हर सीन एक सरप्राइज होता था। और सरप्राइज से याद आया, अगला गाना भी ना तो एक सरप्राइज ब्लास्ट है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो थिएटर से निकलते ही गली में पूरा गाना गुनगुनाते हुए घूमते थे, उस मूवी को याद करते थे। तो ऐसे बेहतरीन अभी गाने 90s के एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद बात करते हैं वीडियो कैसेट के बारे में, जो कि सबसे प्यारी मेमोरी है हमारी 90s की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
3: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
1: Wondering what's next?
2: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
2: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
2: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 9067612000.

0: 90s की बातें विदार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: अब आते हैं मूवी देखने का दूसरा लेवल, वो होता है वीडियो कैसेट। हाँ, वही भाई, फ्राइडे को रिलीज हुई पिक्चर अगर हॉल में मिस हो जाए तो संडे को कैसेट रेंट करना ये काम होता ही था अपना। मोहल्ले का वीडियो लाइब्रेरी से मोटी सी कैसेट मिलती थी जिस पर लिखा होता था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या राजा हिंदुस्तानी, और घर पर एक बड़ा सा VCR, मतलब VCR इतना बड़ा होता था कि आज हमें कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। वो एक लेजेंडरी प्लेयर था यार, वो कैसेट अंदर डालो और पूरा परिवार टीवी के सामने एक साथ बैठकर वो मूवी एंजॉय करता था। चाहे DDLJ हो, हम आपके कौन, हम साथ साथ है, ये सभी फिल्में ना तो फैमिली के साथ हम सभी ने देखी है। और कभी कभी कैसेट अटक जाती थी मशीन में ही तो पापा स्क्रू ड्राइवर लेकर निकल पड़ते थे जैसे कोई सर्जरी चल रही हो यार उस VCR की। सच बोलो यार, आज नेटफ्लिक्स, Amazon सब है, बट वो एक कैसेट की खुशबू, वो प्ले बटन दबाने का थ्रिल, सो उसका कॉम्पिटिशन तो कोई है ही नहीं। चाहे कितना भी OTT वगैरह आ जाए, CD का और VCR का जमाना ही एक अलग होता था। सो इसी जमाने को दोहराते हैं और भी आपकी 90s की यादें ताजा करने की कोशिश करूंगा कुछ देर के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें विदार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: 90s के बचपन में मूवी देखने के दो ही ठिकाने थे, मोहल्ले का थिएटर या फिर वीडियो लाइब्रेरी वाले अंकल की दुकान। यही होता था असली मजा। आरजे अदनान आपके साथ है 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: थिएटर में टिकट ब्लैक में मिलती थी और अंकल की कैसेट वापस नहीं करवाई टाइम पर तो अंकल ऐसा बहुत घूर घूर कर देखते थे। अंकल के पास ना तो एक डायरी होती थी, हर एक मोहल्ले में ऐसे 90s के वक्त में एक अंकल होते थे जिनके पास पूरे फिल्मों की कैसेट की एक डायरी हुआ करती थी जिसमें सबका रिकॉर्ड लिखता था। जैसे कि अदनान ने लास्ट वीक DDLG ली थी, रिटर्न बहुत लेट किया था, और फिर वो कैसेट अपने प्लास्टिक कवर के साथ आती थी जो जरा सा भी खींच दो तो फट जाती थी। वीकेंड का मतलब ही था फैमिली के साथ घर पर बैठकर कैसेट वाली मूवी देखना, छोटी सी स्क्रीन, बड़ी बड़ी कहानियां, और उस वक्त फील होती थी जैसे घर का ड्राइंग रूम ही सिनेमा हॉल हो। तो दोस्तों नॉस्टैल्जिया का शो आपको ले जाता है उन्हीं दिनों में जहां एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा एफर्ट लगता था पर मजा डबल आता था। सो यही मजा दुगना करते हैं, कुछ देर के बाद लौट कर आता हूं, तब तक के लिए आप भी 90s की कुछ यादें दोहराइएगा और एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर हिट गाना।
1: नाइंटीज की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन HGM 90.8 FM।

0: 90s वाला शो सबसे बेस्ट होता है यार, क्योंकि 90s के लोगों की प्यारी सी यादें जो हम दोहराते हैं। आरजी अदनान आपके साथ आया है इन द शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: एंड 90s वाले शो में आज हमने बात की 90s की उस एक दौर की जब मूवी देखना एक बड़ा एक्साइटमेंट वाला काम होता था, मेहनत वाला काम होता था। सुबह उठकर टिकट खरीदना शाम की शो की और विद फैमिली हम मूवी देखने जाते थे। सो यही बातों को हमने दोहराया, फिर कैसेट वाला जमाना हमने एंजॉय किया, VCR की बात की। सो ऐसी 90s की ना तो कुछ प्यारी सी यादें मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ इस अपने 90s वाले शो में। सो और भी आप ना तो 90s वाले शो में किस टॉपिक पर बात सुनना चाहोगे मुझे बताइएगा, याद से आ गया DM कीजिएगा इंस्टा पर RG अदनान इस इंस्टा पेज पर, या तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। सो जल्द से जल्द कीजिए और 90s वाला शो आपको कैसा लगता है ये बताना मत भूलिएगा, याद से बताइए और मुस्कुराते रहिए, 90s का दौर दोहराते रहिए और सुनते रहिए आरजी अदनान के साथ 90s वाला शो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते अगले वीक अपने इसी सफर पर।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM University, Institute, छत्रपति संभाजीनगर।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए एमजी 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, NC3, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM यूनिवर्सिटी, NCT, छत्रपति संभाजी नगर.

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM University Institute Gujarat, Sambhaji Nagar.
1: Wondering what's next?
2: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
2: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
2: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 9067612000.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
1: Wondering what's next?
2: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
1: where innovation meets excellence. Admissions are open
2: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
2: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 9067612000.
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,

लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

इश्क में जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम